0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाई सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 AM अहिले बिहानको 8 बज्यो।

कति पकाए नि मान्दिन हौ कानाछी के छ र मेरो खोटा। नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लेख बेसीको धुन रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 10 AM अहिले बिहानको 10 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: 7 PM
4: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक, इट्स 9 PM।
2: अहिले रातको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।